0: मैं कर लूंगी।
1: अच्छा बेटे, अब तो जाके सो जा। जा।
0: आज मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं तुम्हारे पास सो जाऊं।
1: आओ आओ बेटे, मैं तुम्हें सुना दूं।

बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का, बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। अरे बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं।